0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: You are listening to Ashray FM 90, Nadinuppam, Natarkuppam.